मैं तरसना माया औदे चुकनाई देव चेरी मैं तरसना माया छम छम पाउजू बजाऊंगा हाथ रखूंगी ले जाऊंगा छम छम पाउजू बजाऊंगा।

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला के जन पक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।